0: sorry.
1: अरे उठा ले रे देवा उठा ले, मुझको नहीं इनको। अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू? अरे तेरे को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का।
2: हेलो, क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है?
1: अरे नहीं रे, ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है। गलत नंबर लग गया तेरे को। अरे पीटर,
2: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है।
1: हलकट, तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको, वो ऑटो पायलट। अरे बाबा, उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा।
2: हेलो, क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से हो रही है?
1: देवा, अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा? मैं फोन में घुस के तेरे को मारूंगा। रख फोन, रख। अरे राजू, मेरा मागा वाली टोपी का है रे बाबा।
3: सर ये ईरान वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं?
1: अरे एक काम कर, इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा, इंजन बंद कर दे इसका। मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है अरे बाबा।
3: लेकिन सर ये हॉर्मोस खोल ही नहीं रहे अभी भी।
1: मार साले को, दोनों वाइपर तोड़ दे। एक काम कर, इसका पूरा तेल निकाल ले। ये ले पाइप डाल, एक से गैस निकाल, एक से तेल निकाल।
3: और तीसरे पाइप से?
1: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा, वो दुश्मनों के लिए है, उससे कुछ नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा।
2: सर ये गाड़ी पाकिस्तान की है, बड़ी शोर मचा रही है।
1: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा ना बाबा, क्या मस्त जोक मारा।
3: अरे कौन आ रहा है?
2: हेलो, क्या आप नोबेल प्राइज चाहते हैं?
1: अरे कौन सा वाला नोबेल है रे, सीज फायर वाला या धमकी वाला? एक काम करने का, दोनों भेजने का, दोनों एक अगले साल ले लूंगा, मस्त भेजने का।
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
0: So sorry.
1: अरे उठा ले रे देवा उठा ले, मुझको नहीं इनको। अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू? अरे तेरा

0: को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का।
1: हेलो, क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है?
0: अरे नहीं रे, ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है। गलत नंबर लग गया तेरे को। अरे पीटर,
1: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है।
0: हलकट, तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको, वो ऑटो पायलट। अरे बाबा, उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा।
1: हेलो, क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से हो रही है?
0: अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा? मैं फोन में घुस के तेरे को मारूंगा। रख फोन, रख। अरे राजू, मेरा मागा वाली टोपी का है रे बाबा।
2: सर ये ईरान वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं?
0: अरे एक काम कर, इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा, इंजन बंद कर दे इसका। मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं है रे बाबा।
2: लेकिन सर ये हॉर्मोन खोल ही नहीं रहे अभी भी।
0: मार साले को, दोनों वाइपर तोड़ दे। एक काम कर, इसका पूरा तेल निकाल ले। ये ले पाइप डाल, एक से गैस निकाल, एक से तेल निकाल।
2: और तीसरे पाइप से?
0: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा, वो दुश्मनों के लिए है, उससे कुछ नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा।
1: सर ये गाड़ी पाकिस्तान की है, बड़ी शोर मचा रही है।
0: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा है बाबा, क्या मस्त जोक मारा।
2: अरे कौन है?
1: हेलो, क्या आप नोबेल प्राइज चाहते हैं?
0: अरे कौन सा वाला नोबेल है रे, सीज फायर वाला या धमकी वाला? एक काम करने का, दोनों भेजने का, दोनों एक अगले साल ले लूंगा, मस्त भेजने का।
3: ICFA University, building tomorrow's leaders today.
4: Very good morning, viewers. You're watching First Up on India Today with me, Sriya Kundu. We will be tracking all the top stories of this morning right here in this hour's bulletin. But before that, let's quickly take a look at the headlines first. NEET protests take an ugly turn. Cops pelted with stones again. Protests descend into chaos. Delhi police says swords brandished at the protest. 5 cops injured in violence. Has NEET star been hijacked? Sansad showdown and stalemate. Government reiterates dialogue calls as opposition can decide the duration of the debate. Nadda slams Congress's political raga. Calls out Rahul's selective outrage. Says student star is now being politicized. Wang Chuk seeks government assurance to end fast. Demands no action against protesters. Government assures will respond to his letter. Opposition MPs stopped from meeting Wang Chuk. Jananayagan, Vijay's swan song finally in the theatres. Fans celebrate Vijay's big screen finale. The final Talapathy festival begins.
5: பொண்ணுகளுக்கு பயம் இருக்க கூடாது சார். விஜய புலி புலி மாதிரி வளக்கு. பஞ்ச் பஞ்ச், கம் ஆன் கம் ஆன் கம் ஆன். இந்த வருஷமாவது ஆர்மி அப்ளிகேஷன்ல ஒழுங்கா கையெழுத்து போடுமா?
4: U.S. forces launch more strikes against the Iranian military targets. Iran claims strikes at border areas, says no tanker can leave the Strait of Hormuz without coordination with Iran.

0: so far with maximum protests in Mumbai, Nagpur, Pune. These are the three locations that have seen maximum number of protests outside Delhi, that is. Now, this was followed by Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Assam, which are currently all under scanner and being reviewed as well. Manipur, however, not seen protests, nor in BJP states like Punjab and Himachal Pradesh has seen fewer protests as well. Today, intelligence chief, in fact, took meeting with the DGPs of all these states, with the DGPs of the states. CAPF joined in as well. Concern is that sporadic protests may take place across BJP-ruled states. Now, states have been asked to make preparations to deal with the law and order situation in the wake of protests. These visuals, however, viewers, are from the national capital at this point of time. On your right, the extreme right window that we are bringing to you on your screens is, in fact, of last night itself, when we are learning about there was a group of people who came in at the protest site at near Jantar Mantar, the exact location being of Tolstoy Marg, and there was massive clashes that took place. They suddenly attacked the police, the cops who were deployed there. The ACP of Connaught Place has in fact been injured in the entire exchange as well. Who are these people? Well, that is still being investigated upon. There are facial identifications that are currently underway that the police has been doing to exactly get who are these people. Are these people indeed a part of the student protests? From the looks of it, from what our reporter was also telling us earlier, it does not seem so. But who are these people then? Has the NEET protest then been hijacked? All of these remain to be a big question. But at the same time, security concern, security alert is at an all-time high, and not just in the national capital. Ever since July 20th, the protests, which had initially begun peacefully, then ended up turning into an absolute chaotic episode on July 20th itself. Since then, security has been amped up, and this is not just true for the national capital, but across the country. Yesterday, if we are to speak of July 21st and July 22nd, what we have seen, while on 21st July, the situation had calmed down a little bit in the national capital, there are protests that now have taken over, which are political in nature. That is the BJP workers, the Congress workers. Yesterday, several states saw such protests take place across the country. Himanshu Mishra currently is joining me at this point from Sansad Marg Thana. Himanshu, a very good morning to you. सबसे पहले अभी जो प्रोब चल रही है इस पूरे सिचुएशन में, कल रात को जो हादसा हुआ था स्पेशली, उसके बारे में पुलिस को अभी और क्या जानकारी मिली है अपने जांच से?
1: देखिए, कल रात में तकरीबन 8:30 के आसपास, जहां पर हम मौजूद हैं, यहां से चंद कदम की दूरी पर, क्योंकि पीछे की तरफ जंतर मंतर का इलाका है, वहां से प्रोटेस्टर्स की संख्या ज्यादा हुई। और ये जो आप सामने देख रही हैं बैरिकेड, इसके आगे जो टॉलस्टॉय मार्ग का कट है और ये संसद मार्ग का, वहां पर पहुंचते हैं प्रोटेस्टर्स बड़ी संख्या में, और वहां पर फिर पुलिस भी आसपास मौजूद थी सिक्योरिटी में। ऐसे में जो पुलिस मौजूद थी तो अचानक से ये कहा गया कि कुछ प्रोटेस्टर्स की कहासुनी शुरू हुई पुलिस वालों के साथ, और उसी के बाद कई सारे प्रोटेस्टर्स जो अलग अलग जगह पर जो पुलिस कर्मी मौजूद थे उनके साथ धक्का मुक्की शुरू हुई, और फिर वो धक्का मुक्की अचानक से मारपीट में बदल गई, जिसमें एसीपी जो कनॉट प्लेस के हैं उनको चोट लगी, एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं उनको चोट लगी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कई सारे लोग कल जो प्रोटेस्ट में मौजूद थे श्रेया, उन्होंने चेहरे भी ढके हुए थे, तो आखिर कौन लोग हैं जो छात्रों के बीच में पहुंचे हुए हैं, कौन लोग हैं जो नीट के इस प्रोटेस्ट में अंदर घुसे हैं और इस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ लगातार धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो इन लोगों की पहचान करने की कोशिश जारी है। कुल 10 FIR रजिस्टर की जा चुकी है अभी तक श्रेया, जो दिल्ली के नई दिल्ली इलाके के 5 अलग अलग थाने हैं वहां पर FIR दर्ज की गई है और जा रही है। कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए, जो कैमरा है उसके जरिए पता लगा है कि किस तरीके के लोग भी प्रोटेस्ट में घुस आए हैं, वो किस मकसद से आए हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी तो ये सारी चीजें साफ होंगी, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है वो ये कि किस

0: दूर पर ही अटैक हुआ कल पुलिस पार्टी पर, आरएएफ के जवानों पर, और एक जो इंस्पेक्टर है नंद किशोर उसकी तो लिंच करने की कोशिश की गई, इसको बुरी तरह से मारा पीटा गया, फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जबकि जो कनॉट प्लेस के एसीपी है विवेक भगत, उनको रेस्क्यू किया गया, उनको बुरी तरह से चोट आई है। बैक टू बैक 21 जुलाई और 22 जुलाई को शाम के वक्त ये इंसिडेंट हो रहा है, तो शाम के वक्त ही ये इंसिडेंट हो रहा है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व भी अब इसमें शामिल हो जा रहे हैं। देर शाम को इस तरह के इनपुट मिले हैं और इस पर भी प्रॉप चल रहा है। साथ ही कल जब ये पूरी इंसिडेंट हो रहा था उसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजर है प्रोटेस्ट के, उनको बुलाकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप इस भीड़ को एड्रेस करिए, लेकिन भीड़ ने उनकी भी बात नहीं सुनी और काफी ज्यादा इंजरी आई है। कल अगर बात की जाए तो 5 पुलिस पर्सनल घायल हैं। कल शाम 6 बजे पहले एक स्टोन पेल्टिंग हुई जिसमें एक एसीपी घायल हो गए, उसके बाद 8:30 बजे के आसपास टोलस्टॉय मार्ग के तरफ जो है काफी पथराव हुआ, लाठी डंडों से पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस ने भी हल्की लाठियाबाजी, आंसू गैस के गोले फोड़े, उसके बाद पुलिस पर पथराव होना शुरू हो गया और पुलिस को घेर करके एक फुटेज आया है जिसमें नंद किशोर इंस्पेक्टर उनको घेर करके मारा गया, फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
1: जी अरविंद, ये हम आपके पास वापस आ रहे हैं, बट मुझे अपने व्यूअर्स को ये विजुअल्स के बारे में थोड़ा बताने दीजिए। व्यूअर्स, एज यू सी ऑन योर स्क्रीन्स, एज वी वर मेंशनिंग, 2 ACPs, वन ऑफ पंजाबी बाग एंड द अदर ऑफ कनॉट प्लेस। द वन इन द पर्टिकुलर विजुअल यू आर सीइंग इज ACP विवेक बाग, हु इनफैक्ट गॉट इंजर्ड यस्टरडे इटसेल्फ इन दीज क्लैशेस एंड देयर वर स्टोन्स दैट वर थ्रोन एट हिम। ही इज द ACP ऑफ कनॉट प्लेस। द अदर ACP हु वाज इंजर्ड वाज जय प्रकाश। He is the ACP of Punjabi Bagh and he also got injured in one of these clashes with stones having been thrown at him. So this is the visual that tells the story at this point of time of what exactly happened. And last night it was a tense situation at the protest site with these clashes continuing for quite some time till the police could bring the situation under control. On that note, let's take you through another visual that we have been able to access. It's a CCTV footage of the CJP protest from a Janpath petrol station dated July 20th, appearing to show protesters pelting stones at police and vandalizing public property, including the petrol pump. Authorities are investigating those who were involved. Remember, a majority of these investigations are now dependent on facial recognition, which is also one of the reasons why yesterday in the clashes that we saw erupt overnight, a lot of these people, these miscreants, were seen in masks so that the facial recognition cannot reveal their identities. So yes, things are indeed quite grave in terms of security concerns across the national capital at this point of time. This is a visual, however, from July 20th is what we are learning of, from a petrol pump station at Janpath, which has captured an entire episode of protesters running helter-skelter but with stones at the same time, trying to chase down, get into clashes with the police and attacking them as well. On that note, we have more news coming in. Let's quickly take a look. Viewers, this is the news we have been bringing to you since yesterday. There are as many as 16 metro stations across New Delhi at this point of time that's been shut down. Rush hour commuters have, however, been hit due to the same. 16 stations shut to keep protesters at bay. Commuters face delays as metro curbs kick in. Morning rush hour, heavy security has been, in fact, deployed at these stations. No metro access to central Delhi whatsoever. Metro curbs, thousands take alternate routes. Security measures disrupt the capital commute at this given point of time. We have a ground report on the same. Take a look as to how the daily commuters, office goers at this point of time have been affected with this very preemptive measure taken by the Delhi police at this point.
2: Metro stations. That's the number where locks are hanging this morning around the Lutyens' Delhi, right from Mandi House to Barakhamba Road to ITO.

0: take up their issue. They're going to, discuss about the reforms, about the problems that are prevailing in the education sector. But it seems that that's just not happening. Even as we speak, there seems to be massive trust deficit between.
1: चर्चा करने की अनुमति दूंगा सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक स्थगित की जाती है
2: It's just 2 minutes, and within 2 minutes, we've seen the Lok Sabha get adjourned. Massive chaos inside Parliament and outside too, as is evident. Let's go straight to proceedings in Raj Sabha now.
3: No, it has been mentioned as Kerala, but the name has been now changed as Kerala. That has to be rectified. I am sorry, I am rectifying it, Kerala. Papers to be laid on the table, Dr. Jijendra Singh Ji.
4: And sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1, bracket A, in today's revised list of business. Thank you, Chairman, sir.
3: Dr. Chandrasekhar Vemmasani Ji.
5: Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1B in today's revised list of business. Thank you.
3: Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Finance, Sriman Vinod Sridhar Davde Ji.
6: Mohday, main aaj ki karyasuchi mein apne naam ke samaksh yathaullekhit vitta sambandhi sai samiti ke pratibhuti bazar sanhita 2025 vidhayak se sambandhit prativedan ki ek ek prati sabha patal par rakhta hu.
3: Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Sriman Sautri Mohammed Ramzan Ji.
7: With your permission, Honorable Chairman, I rise to lay a copy each of the 15th and 16th report, English and Hindi version, of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, as mentioned against my name in today's list of business.
3: Now, matters rise with permission.
8: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें लेकिन कंडीशन मत लगाइए कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़े कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए ताकि कोई भी देश में प्रोपर्टी का खतरा होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए इतना अच्छा सरकार मेरा रिक्वेस्ट यह है कि आप कंडीशन मत डालिए बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन फर्स्ट और चर्चा शुरू करें हमने मांग करता कि चर्चा आज ही शुरू

0: चांदनी सर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से
1: भारत
0: चर्चा के लिए
2: All right, so no different the situation is in the upper house, viewers. As you can see, the house has been adjourned. Once again, you heard from the Parliamentary Affairs Minister, Kiran Rijiju, who said that we are ready for a discussion. Something the government has been saying inside and outside Parliament, but the opposition isn't ready. The lower house was, in fact, it convened at 11 o'clock in just less than 2 minutes. It was adjourned. Now the upper house too has been adjourned. Dharmendra Pradhan must resign. Says the leader of the opposition in Raj Sabha, Mallikarjun Kharge. Kiran Rijiju, the Parliamentary Affairs Minister, says we are ready to discuss this. Let's debate this. But the government is, but the opposition isn't in any mood. It says, let's see the resignation of the Union Education Mantri and then we shall speak. That is what the opposition is saying. So nobody really is backing down from their respective positions as of now. What is the casualty here? Clearly, Lok Sabha and Raj Sabha, which means legislative business is the casualty. Your money, your taxpayers' hard-earned money is something that is getting wasted right here with the houses not functioning. Attempts were made to, in fact, start the proceedings in both houses. Started briefly in Lok Sabha and ended in less than 2 minutes. Then in Raj Sabha, ended in 7 minutes sharp. This is what has happened right now in both houses of parliament, where the government and the opposition are not budging, Aishwarya, from the positions that both of them have now taken, isn't it? Lok Sabha adjourned in less than 2 minutes, Raj Sabha adjourned in 7 minutes.
3: You know, we are seeing how the opposition is now hardening its stand, Sneha. They are now saying that they do want a discussion, but under the rule in which they want a long discussion. The government, however, has been saying we can have the discussion for as long as you want, but you cannot dictate the terms of when and how the discussion will actually take place. From what I understand, Sneha, we could see a very important meeting happening at about 12 o'clock when the House resumes. We could see the Speaker, Om Birla, speaking about the rule under which the discussion will take place. So let's wait for 12 o'clock. We should get more clarity. The government very, very clear. Even if you want 12 hours, 18 hours of discussion, we are ready to do that. But you cannot say that you want the resignation first before the discussion happens. That's not how discussion takes place.
2: Yeah. Absolutely. But what's the midpoint, Aishwarya? There has to be one, isn't it? Given that the house isn't functioning. We'll connect with my colleague in a moment. But these are pictures from a few moments ago. In Parliament, in Lok Sabha and Raj Sabha. These are images from Raj Sabha, which was adjourned at 11:08 and Lok Sabha was adjourned at 11:02. In fact, in few moments, as soon as it was, the House proceedings resumed. We've seen the stalemate in Parliament ever since Monday when the monsoon session of Parliament started. What really is happening is that the government is saying, we'll discuss this issue. The opposition on one hand is saying that we will, but first, let the Union Education Minister resign. Why isn't that happening? Why isn't there accountability? And also discussion under favourable rules, which warranty a detailed threadbare discussion on NEET. This is not something that the government wants. The government rather would go with a shorter discussion on this issue and a statement perhaps. But the opposition says let there be a whole discussion on this and that's where they're sticking. These are the sticky points and this is where the opposition and government are not finding common ground. Well, the casualty here, viewers, clearly is legislative business. Listen in, Parliamentary Affairs Minister.
4: एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक करता होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन और चर्चा तुरंत शुरू करें। हम मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए।
1: पार्टी भागती है, आप देखिए किस प्रकार दो तीन दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हो माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए, सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते, और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें, चर्चा करें। अब हम सब भी अंदर जाके देखने वाले हैं कि क्या चर्चा होगी या आज भी स्थगन के लिए कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत रहेगी। बिल्कुल बच्चों के साथ कोई राजनीति नहीं, बच्चे किसी भी दल के नहीं होते, बच्चे भारत के होते हैं, हिंदुस्तान के हमारे बच्चे हैं, हमारे घरों में भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने भी नीट दी है, बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है। चर्चा करिए और निराकरण निकालिए। धन्यवाद।
2: All right, so the confrontation continues and that there is no one that is budging from their position. What you see, viewers, right now are images from outside Parliament where there are protests happening.
5: Or NDA ke sansad. है कि सरकार इस समय डिस्कशन नहीं चाह रही है, लेकिन सरकार ने बोला है जितने घंटे आप चाहते हैं उतने घंटे डिस्कशन होगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हैं। रवि जी, आमना सामना हुआ अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष का।
6: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है। और पूरे सरकार के सचिवों को कहा है कि नौजवानों की समस्या के लिए सारी कार्रवाई करें। ये संसद में बहस नहीं करते, माननीय लोकसभा के स्पीकर ने कहा बहस को तैयार है, सरकार बहस को तैयार है, वो बात शुरू नहीं करते। हम जवाब देने को तैयार है, वो भाग जाते हैं और कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये मतलब क्या है इसका? तो इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं, जिस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं, बहस करेंगे नहीं और खाली भागेंगे, ये बहुत ही गलत है, इसके बहुत भर्त्सना करते हैं।
5: हम भर्त्सना करते हैं और जिस तरीके से ऑपोजिशन जो है वो कोशिश कर रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो अपनी बात सामने ना रख सके।
2: Parliament turned into a political battleground as the opposition and the NDA government squared off over the NEET paper leak controversy and Rahul Gandhi's protests outside the Home Minister's office. Amid sloganeering and heated exchanges, opposition MPs accused the centre of failing students and suppressing dissent, while the government hit back, alleging the protests were politically motivated and disrupted Parliament. The face was spilled from the house into the Makkar Dwar, like we've seen, with both sides refusing to back down. We have images on your screens right now, the manner in which the Parliament House has really turned into a huge political battleground. We have more reactions pouring in. Let's take a listen.
7: संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले। तो एक तरफ हमारी सरकार छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील है और छात्रों को राजनीति की दृष्टि से नहीं देख रही है, शिक्षा व्यवस्था को उचित और व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील है और दोषियों को कठोरता के साथ दंड मिलने के लिए प्रयत्नशील है। दूसरी तरफ विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। अतः बहुत स्पष्ट रूप से हम विपक्ष से कहना चाहेंगे, सदन में चर्चा करिए। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, अब सदन प्रारंभ होने वाला है, आइए चर्चा करिए और सारे विषयों के ऊपर खुलकर बात करिए। राजनीति का कंधा दूसरों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि मैं छात्रों से भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ अवसरवादी सत्ता लोलुप अराजक तत्व आपके आंदोलन में आकर उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और ये वही चेहरे हैं जो अलग अलग चेहरा बदलकर समय समय पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं और वही वाक्य वही शब्द दोबारा उठकर आते हैं जिनका शिक्षा व्यवस्था या नीट से कोई संबंध नहीं है। ये वही लोग हैं, वही चेहरे जो कभी सीएनआरसी के समय, कभी किसान आंदोलन के समय, कभी पहलवान आंदोलन के समय, तो कभी अब। तो मैं कहना चाहूंगा एक ही चेहरे हैं, छात्रों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिसीजन लिया गया है। ये वही चेहरे हैं जो कभी मुसलमान के पीछे, कभी किसान के पीछे, कभी पहलवान के पीछे और कभी नौजवान के पीछे जाते हैं, मगर इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और पुनः हम विपक्ष से कहना चाहते हैं, सदन में चर्चा करिए, चर्चा करने से मत रोकिए, सदन को मत रोकिए, खुली चर्चा होने दीजिए। और आजकल तो सीधा प्रसारण होता है, जनता को निर्णय करने दीजिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन ईमानदारी से प्रतिबद्ध है और कौन राजनीति से पूरी तरीके से ग्रस्त है।
8: थैंक यू।
2: You've heard there from the Bharatiya Janata Party and also from the opposition at it, saying that The minister in question has to resign. Rahul Gautam continues to be with us on that story. Rahul, the opposition really digging in its heels here, saying that why is there no accountability at the end of the day? Why isn't the mantri going? That's the question the opposition is asking.
8: Well, they are asking it and they're repeatedly asking it, Sneha, and that's why we saw protesting MPs carrying out demonstration right at the gate of Makar Dwar. They were holding they were chanting slogans, holding banners. They were demanding that Dharmendra Pradhan should be sacked immediately. Now, Rahul Gandhi himself said that this is something which is absolutely non-negotiable. The party is not going to relent until Dharmendra Pradhan is removed from his post. Also, they are demanding that there should be a full-fledged discussion on this issue. Now, government is blaming and accusing opposition leaders of shying away and running away from the discussion, saying they are only resorting to petty politics by doing these optics, doing these protests at the gate of Makar Dwar. So clearly, it seems that the consensus is still missing at this point of time. We have to really wait and watch how the government is going to bring in opposition on board as far as House is concerned, because it seems that we are heading towards a complete washout, Sneha. We have seen in past three to four days that how there has been no coordination between Treasury and opposition benches, and things are only escalating with each passing day. Rahul Gandhi holding press conference, seeking apology, seeking resignations of two union ministers, including that of Home Minister. They are also saying that Prime Minister must give an apology. So clearly they are only increasing the heat and the political temperature of the country. And they clearly believe that government is on back foot. And that's why they want to exert more and more pressure on it so that it succumbs to the pressure and takes resignation of Dharmendra Pradhan. We have to really wait and watch that how this stalemate or this impasse will be resolved. But at this point of time, the opposition is in no mood to give any sort of space to government.
2: And both of them are really not really budging, isn't it, from their positions. I'm going to come back to you, Rahul Gautam, with the very latest on that big story. That's a big drama that's playing out inside and outside Parliament. Both houses, viewers, have been adjourned. Yet again, listening to what Priyanka Gandhi Vadra, Member of Parliament from Wayanad in Kerala, has had to say about the kind of violence that we've seen the last few days in the national capital.
9: अपने मंत्री से resignation लो. क्या है वो स्टेप्स मारपीट हुई है ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे भरोसा है चिंता है परेशानी है बच्चों के लिए तो बुलाओ बच्चों को बात करो उनसे
2: मिस्टर मोदी हैज सॉट टू अशोर प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ अ पेपर लीक मेनेस. He well took to social media to announce that his government will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in NEET paper leaks. The statement came amid continuing demonstrations over NEET paper leak and wider concerns about the integrity of competitive examinations. Protesters have demanded accountability for examination irregularities, systemic reforms and the resignation of Union Education Mantri Dharmendra Pradhan. The Prime Minister's statement also countered Rahul Gandhi's claim that zero convictions had taken place in this claim. The Leader of the Opposition on his part has rebutted Prime Minister's statement. He took to his Twitter handle to rehash the core demands of students and accused the Prime Minister of destroying India's education system. On Wednesday, Rahul Gandhi came down heavily on the government over paper leaks alleged. No one has been convicted in this matter. Listen in.
10: 7.5 crore students and their families are affected by this. These are middle class and poor families. They put their hard-earned money into this. And then they literally spat on. And the best part of this is zero convictions. In the last 10 years, 152 leaks have taken place and zero convictions Zero. So somebody is, or a group of people are destroying our education system, India's most valuable asset, destroying the lives of our students. And what does the government do? Zero convictions. So this is the first reason, an absolutely legitimate reason, why our youngsters are protesting.
2: So what has the Prime Minister really said at this point in time as far as assurances are concerned? Well, he did speak about fast-track courts for paper leak cases. He's also said there would be swift trials, tough punishment for paper leak accused, also moving to safeguard the future of the youth. No leniency for paper leak mafia, issuing directions to concerned authorities, assure center support to the youth. Viewers, will continue to get you more on that story. For the moment, we're pausing for a quick commercial break. On the other side, the wait is finally over for Jananayagan, Vijay's swan song, finally in theatres. Fans celebrate Vijay's big screen finale, the final Thalapathy festival across India.
11: You are watching India Today.
12: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
14: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.

0: are watching India Today.
1: Welcome back. The parliament has turned into a political battleground as the opposition and the NDA government squared off over the NEET paper leak controversy in Ram Gandhi's protests outside the Home Minister's office. Amid sloganeering and heated exchanges, opposition MPs accused the centre of failing students and suppressing dissent. While the government has hit back, alleging the protests are politically motivated and disrupted parliament. The face was spilled from the house into the Makkar Dwar with both sides refusing to back down. Listening to Congress's KC Venugopal here.
2: पा नहीं होगा तब तक सदन नहीं चलेगी और उसके बाद ही कोई चर्चा होगा
3: लेकिन आज तो इंडिया और एनडीए के दोनों के सांसद आमने सामने आ गए क्या आपको लग रहा है मंच
2: अब इनको समझ में आ गया है इसलिए देख लीजिए इनको जवाब देना चाहिए छात्र छात्राओं पर जो लाठी चार्ज हो रहे हैं पटना में भी कल छात्र छात्राओं पर लाठी चार्ज करने का काम किया ये डबल इंजन की सरकार ये किस तरह का शोषण करना चाहते हैं ये तानाशाही राज कर रहे हैं ये
3: तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और एक तरफ जहाँ इंडिया ब्लॉक के सांसद यहाँ मौजूद है वहीं दूसरी ओर एनडीए के सांसद भी यहाँ पर आ गए हैं और नारेबाजी लगातार जारी है जितने भी तख्तियां हैं उन सभी को लेकर यहाँ पर सांसद पहुंचे हैं और फिलहाल तस्वीरें कहीं ना कहीं ये भी दर्शाती है कि हाथ में जो तख्तियां थी जो कागज लेके आए थे सांसद उसको फिलहाल यहाँ पर फाड़ कर फेंका भी गया है तो एक ये भी तरीका है जो जिसके माध्यम से जो सांसद है वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं देखिए कैसे जो नारे जिनका कागजों पर लिख के लाए थे वो यहाँ पर फाड़ कर फेंके भी गए तो लगातार यहाँ पर स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसद इस वक्त यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और आप देखिए लगातार कैसे जो है प्रोटेस्ट हो रहा है तरुण चुग जो सांसद है बीजेपी के वो हमारे साथ मौजूद है सर ये आज आप लोग क्या मांग लेके आए
4: प्रधानमंत्री जी शुरू से ही दोषियों को कठोर कार्रवाई के लिए कार्यबद्ध है आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया कि किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे एक एक दोषी पर कठोर कार्रवाई होगी और उसके लिए फास्ट ट्रैक बनेगा जो भी दोषी हैं पर कुछ लोग हमारे बच्चों के भविष्य पर राजनीति कर रहे हैं हमारे बच्चे इनके सपनों को पूरा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार वचनबद्ध है कार्यबद्ध है और सरकार पूरी तरह से काम कर रही है लेकिन ये बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए उनके जीवन पर राजनीतिक रोटियां सेकने का
3: एक ही मांगे साफ ये कह रहे हैं कि हम संसद से चलने ही नहीं देंगे काम आगे बढ़ेगा नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा क्या कहेंगे
4: सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो ये राहुल गांधी और उनका कुनबा चर्चा से भाग क्यों रहा है ये स्पष्ट है कि ये चर्चा से भागने का मतलब है कि ये इनके पास सच्चाई नहीं है इनको पता है कि चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लोग धराशायी हो जाएंगे
3: तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर चर्चा हुई तो विपक्ष धराशायी हो जाएगा और लगभग आधे घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद यहाँ पर अब सांसद संसद भवन के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं धीरे धीरे स्थिति कहीं ना कहीं अब ठीक होती हुई नजर आ रही है हालांकि जो सुरक्षा बल है वो अभी भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और एक सांसद अभी भी जो है वो बैठे हैं उनके हाथ में तख्ती है विपक्ष के सांसद हैं और स्थिति और मांग रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो
1: So there's high drama inside Parliament, as you can see outside. Now, let's take a look at this report that was filed by my colleague Rajdeep Sardesar. The situation on the ground as far as the heart of the protest. It all started in Jantar Mantar, remember, where the students have been camping for days at a stretch, and so has the CJP. Let's take a look.
5: It was 2 days ago that clashes broke out here in the heart of central Delhi, in and around Jantar Mantar. Clashes between the youth protesters marching towards Parliament and the security personnel. Clashes that have shaken the nation in and outside Parliament. Clashes that have seen students being injured and policemen. 2 days later, there is an eerie silence of sorts here even as the protesters have come back to Jantar Mantar for their sit-in. The question is, what really is driving this protest? That's what I want to try and find out. Come with me on this Ground Zero report.
3: क्या नाम है आपका
6: सोनू यादव सर
3: सोनू यादव कैसी लगी इंजरी क्या हुआ
6: हम लोग यहाँ से शांति प्रिय तरीके से जंतर मंतर से संसद भवन की ओर जा रहे थे उसी बीच पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज किया आंसू गैस के गोले दागे और बिना मतलब के बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ा प्राइवेट पार्क में तो डंडे डाले
3: और शांतिपूर्वक था उस समय क्योंकि पुलिस कह रही है कि कई लोगों ने पत्थर फेंके उसके जवाब में टियर गैस हुआ
6: वो एक वीडियो फोटो अलाउ कराते हैं कि यहाँ पत्थर फेंका या
3: नहीं वीडियो तो है उनके पास भी है वीडियो
6: वो लोग उनके भीड़ बहुत सारी होती है अपने ही लोगों ने सुनियोजित करके बीच में घुसा के वो पत्थर की गाड़ियाँ कहाँ से आई थी रात में यही जंतर मंतर में पत्थर की गाड़ियाँ डंडों की गाड़ियाँ हमने रात में पकड़ी थी सर ये प्रोपेगेंडा है बीजेपी पार्टी का हम लोगों को बदनाम करने का
3: आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं
6: नहीं मैं पार्टी से किसी नहीं मैं विचारधारा मुद्दे के साथ जुड़ा हूँ
3: क्या मुद्दा है
6: मुद्दा एजुकेशन का है जिस प्रकार से देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं ये सरकार नहीं पेपर लीक की सरकार हो गई
3: वो पहले भी होते थे सरकार कहती है
6: पहले कार्रवाई भी होती पहले इतने नहीं होते थे आप डाटा निकाल के देखिए ऑन रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे 150 से ऑन रिकॉर्ड पेपर लीक है और कुछ तो अव्यवस्थाओं के कारण उन्होंने दबा दिया कि वो पेपर लीक नहीं है 200 का आंकड़ा है पेपर लीकों का
3: तो आप यही बैठे रहेंगे जब तक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का ना हो
6: जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले भी नहीं है एक लाठी या 1000 लाठी गोली या जेल
7: मैंने वीडियो देखे जिस तरह छात्रों पर हमले हो रहे हैं जिस तरह हमारी बहनों के साथ प्राइवेट पार्ट से अरे जगह पुलिस लाठियों के साथ बर्बरता कर रही है इतनी ज्यादा वायलेंस कर रही है वही देख के मैं आया हूँ
3: पर यहाँ तो स्टेज पर सब समाजवादी पार्टी वगैरह जुड़ गए हैं आप किसी नेता से जुड़े हुए हैं या नहीं
7: नहीं नेता से जुड़ने की बात नहीं पार्टी अगर विपक्ष में है तो उन्हें सवाल करना चाहिए और सरकार की जवाबदेही है कि वो सरकार जवाब दे छात्रों का जवाब दे पार्टियों के जुड़ने से पार्टियों के रहने से नहीं मतलब है
3: तो आप चाहते क्या है
7: हम लोग चाहते धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा
3: इस्तीफा से क्या होगा
7: इस्तीफा से बदलेगा सिस्टम जवाबदेही तय करेगी सरकार
3: तो आप यहीं रहेंगे जब तक इस्तीफा ना हो
7: जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम ही नहीं लाखों छात्र जो आए देश के कोने कोने से सब यहीं रहने का काम करेंगे
5: सो इज दिस अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ अ मिनिस्टर और इज इट अबाउट द वाइडर क्राइसिस ऑफ एजुकेशन
8: द वाइडर क्राइसिस ऑफ एजुकेशन फॉर श्योर एंड द एजुकेशन मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट
5: इज दिस नाउ अ पॉलिटिकल मूवमेंट हैज इट बीन हाईजैक्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज
8: एवरीथिंग इज पॉलिटिकल राजदीप
5: Yes, what do you want to say?
9: We're not associated with any political party. CJP just happens to be a medium by which we can raise an issue which has been happening since years and through that bring to light other issues which this government has been creating. It's not associated with any person.
3: आपने भीम का नाम दिया है.
8: Yes, exactly.
3: भीम से बुद्धिमान, गांधी से अहिंसा, भगत का इंकलाब, जुबान पर राम राम.
8: Yes, sir. See, there is a very unique thing about this generation, this Gen Z, because we have this भीम से बुद्धिमानी. We are the student of university. We are not associated with any association or organization. We are Gandhi like Ahimsa, which we seen on the 20th July that we are non-violent. We were like Bhagat Singh's revolutionary. We had this Juban par Ram Ram. As you were seeing that at night, we were doing Kirtan of Radha Rani and like God Ram Ram. So this is very unique thing about Gen Z, which has not happened.
5: Are you not scared by the fact that there was violence here a few days ago? Students got injured. That has not कोई फर्क नहीं नो
9: इज द गवर्नमेंट नॉट स्केयर्ड ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स हियर व्हाई आर दे नॉट गिविंग अस एन आंसर वी डिमांड अ रिप्लाई
5: सो यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ टियर गैस एंड बेटन
7: दे से किसी को इतना मत डराओ कि उनका डर ही खत्म हो जाए अब हमें डर ही नहीं है ये क्या करेंगे चार डंडे मारेंगे पैर तोड़ेंगे ठीक होगा फिर आएंगे हम यहाँ बैठेंगे जब तक वो रिजाइन नहीं करते
3: ये राजनीतिक है या आप लोग स्पॉन्टेनियसली यहाँ आए हो अपनी मर्जी से आए हो
10: हम अपनी मर्जी से आए हैं ये राजनीति बिल्कुल नहीं है
11: सर सवाल ये पॉलिटिकल है इनको क्या कुछ ना भी कुछ करके डाइवर्ट करना ऐसे नहीं वैसे कुछ ना कुछ करके करेंगे कभी बोल देंगे ये खालिस्तानी है ये तो स्टूडेंट नहीं उपद्रवी है पत्थर इन्होंने खुद रखवाए यहाँ पे आज पीसफुल प्रोटेस्ट
3: पर कुछ कुछ युवाओं ने भी पत्थर फेंके
11: सर यहाँ से दीपके का वीडियो है, वो कह रहा है इनको बाहर फेंकी है। अब सर इतने लोगों में कह नहीं सकते कौन कहाँ से है, इनके खुद के लोग आए हुए हैं, पत्थर इतने कहाँ से आए।
10: आज के गुंडे भी तो थे इसमें, आप ये भी तो देखो, जो
11: स्टूडेंट
10: बिना वर्दी के स्टूडेंट को मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? बिना वर्दी के स्टूडेंट के खिलाफ जा रहे हैं, पुलिस रोक क्यों नहीं रही है उनको?
5: Now, one of the more interesting aspects of the Andolan taking place here at Jantar Mantar by the Cockroach Janata Party is suddenly a lot of politicians are arriving here, particularly from Maharashtra, the home state of the founder of the CJP, Abhijit Dibke. One of them, Manoj Zarange Patil, who led the Maratha reservation agitation, is with us. Manoj ji, namaskar.
12: Namaskar.
5: Ye bataiye, aap yahan aaye hain Maharashtra se, kya wajah hai? क्या ये आंदोलन अब राजनीतिक रूप ले रहा है या ये छात्रों का आंदोलन है? आप क्यों आए?
12: ये आंदोलन विद्यार्थ्यांचं
5: त्यांचं आहे,
12: अजिबात हे राजकीय आंदोलन नाही आहे, याला कोणी गालबोट लावायचा प्रयत्न करू नये। गोरगरिबांचे लेकर न्यायासाठी भांडत आहेत,
5: पण आपण का आलाय?
12: गोरगरिबांचे विद्यार्थी हेच देशाचं भविष्य, यांच्याच आईबापानं मोदी साहेबांना सत्तेवर बसवलं देशातल्या। आज मोदी साहेबांना ती आठवण नाही राहिली।
5: हे मोदींच्या विरोधाचं आंदोलन झालंय की छात्रांच्या सिस्टम कसं बदलायचं त्याचं आंदोलन आहे? हे मोदी विरोधी झालंय की छात्रांचे प्रश्न कसे मिटवायचे?
12: महाराष्ट्र सरकारनं नंतरच्या काळात मराठा आंदोलनाची दखल घेतली आणि डाग पुसून टाकला। तसंच मोदी साहेबांनी सुद्धा, हे मोदी विरोधी आंदोलन म्हणायचं नसेल तर मोदी साहेबांना इथं लोक पाठवून यांना न्याय द्यावा हेच लोक म्हणतील मोदी साहेब आमचे आहेत। ते जर तुम्हाला नुसतं एक राजीनामा मागितला साधा, सरकार बरखास्त करा म्हणून नाही सांगितलं। ज्या मिनिस्टरची चूक आहे त्यांना राजीनामा द्या म्हणून सांगितलं। तुम्ही हसत हसत या जनतेचं म्हणणं स्वीकारायला पाहिजे होतं मोदी साहेब, हसत हसत।
5: पण सिस्टम बदलणार का एका मंत्रीच्या राजीनामा नंतर?
12: आधी वाटत होतं बदलल, तुम्ही जर राजीनामाच घेत नाही तर आता वाटतं सिस्टम कोणचीच बदलू शकत नाही।
5: Why have you all come here?
13: When people the same age as us have committed suicide because of the incompetence of a fascist government, I think it's fair that we come here and protest it.
5: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
13: We want to see dialogue with the government. We want to see accountability from the government for the lives of the students, for all the exams that have been leaked, for the papers that have been leaked, and for everything that is going on, the police violence that is going on over here, the police brutality that is going on.
5: Are you a student?
13: Yes, I am.
14: Sarkar ka ahankar todne ke liye hum yahan aaye hain. Sarkar jis ahankar mein hai, kabhi bhi is prakar ka sarkar ko ahankar nahi hona chahiye. जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए।
15: हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्ल को, अपने यूथ को सपोर्ट करने आए हैं और कोई गलत बच्चे डिमांड नहीं कर रहे।
14: 20 तारीख को इन्होंने जब बातचीत करने के लिए बुलाया था, शांति आप चाहते थे तो फिर आपने लाठी चार्ज क्यों करवाई?
16: हमने देखा है कई पुलिस कर्मियों को भी जख्मी किया गया है, वहाँ भी हिंसा हुई है, स्टोल पंटी हुई है, उसका क्या?
17: सर पहले
16: एक मिनट,
17: सर पहले लोगों ने कुछ नहीं किया था, अगर कोई मारेगा आपको तो कुछ लोग आक्रोशित होके उन्होंने अटैक कर दिया होगा, लेकिन पहले अटैक पुलिस ने किया।
5: मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप लोगों को इस प्रोटेस्ट में से क्यों आप जुड़ गए हैं, वजह बताइए मुझे।
18: बच्चा सर ये हमारे भाई हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पढ़ रहा है और कर रहा है, 20 बच्चों की मौत हो गई सर।
5: आप क्या कर रहे हैं?
18: मैं मजदूरी करता हूँ सर।
5: आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट से कुछ बदलेगा?
18: क्यों नहीं बदलेगा सर, आजादी मिल गई सर इकट्ठा होने से, हाथ से हाथ जुड़ेगा, एक संगठन मजबूत होगा।
5: ये कहा जाता है
18: सरकार की जो विफलता इसी वजह से हमें सड़कों पे आना पड़ा है।
5: सरकार कह रही है ये राजनीतिक रूप अब ले रहा है, ये पॉलिटिकल।
18: आपको किसी राजनीतिक एजेंडा दिखा? यहाँ सब भारतीय, सब इंडियन है, वी आर इंडियन।
15: यहाँ के लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं, यहाँ 30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, नीट को लेके पेपर लीक कर दिया, लोगों को कोई दर्द नहीं है
18: सर। सरकार
15: इतना ब्रूटली पुलिस ने लोगों को मारा 20 तारीख के प्रोटेस्ट।
5: पुलिस कहते हैं कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की। आप नहीं मानते कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट भी जुड़ गए थे आप?
15: बिल्कुल नहीं, कोई है जो देशभक्त है वो सड़कों पे है, और इन लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा चलाया कि पाकिस्तान से संपर्क जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व है। कहां से पाकिस्तान के लोग? देश के हर कोने से युवा यहाँ पे आया था, अपनी बात रखने, अपनी आवाज सकते।
19: अब तो सरकार डायलॉग के लिए तैयार हो गई है, नड्डा जी आपके सर नेताओं से मिल रहे हैं।
20: इतने बच्चों को सर घायल करने के बाद अब सरकार तैयार हुई, 20 दिन तक यहाँ सर दिख नहीं रहा था दिल्ली के अंदर कि सरकार एक बार आके बातचीत करे,
19: तो अब तो तैयार हो गई है
20: सर। अब क्या खुले यहाँ पे आके बात करना, सरकार अपने घर पे बुला के सरकार क्या बात कर रही है क्या नहीं बात कर रही सर, ट्रांसपेरेंसी नाम की इस गवर्नमेंट में कोई
19: आपको नहीं लगता है। पर आपके नेता जा रहे हैं, आशुतोष और सौरभ गए थे मिलने जेपी नड्डा से,
20: कोई बात का हल नहीं निकला ना सर। सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार बात करे और सर अकाउंटेबिलिटी ले सर।
19: अ लास्टिंग एंड एंड्योरिंग इमेज फॉर मी हियर एट जंतर मंतर इज दिस स्पॉट where the shoes and slippers of all those who lost them during the protests when they happened on Monday and the students were tear gassed and lathi charged. They are a reminder in a way of the undaunted spirit of the students and also of the happenings of Monday. Let's be honest, like any other protest over time, this is part organic but also increasingly political. But what one cannot deny is an element of spontaneity in the fact that in this hot and humid weather, students and youth from across the country have assembled here. And for whatever reason, in that sense, the issues being raised have struck a chord among the young. And that perhaps is one good reason why the government should be reaching out to the protesters here. This is Rajdeep Sardesai at Jantar Mantar for India Today.
1: But you can find that detailed report and much more on our website. That's indiatoday.in. You can download the app as well. News continues right here. Thank you for watching.
21: You are watching India Today.
22: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
23: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
24: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.

0: And first up, we get you breaking news coming in. Parliament Mantri Rijiju's big charge on Rahul Gandhi and the opposition, where Kiran Rijiju has said that the government wants a debate on the neat paper leak and all that has followed, but the opposition is avoiding one. Parliament has turned into a political battleground as the opposition and the NDA government squared off over the neat paper leak controversy and Rahul Gandhi's protests outside the Home Minister's office. Amid sloganeering and heated exchanges, opposition MPs accused the centre of failing students and suppressing dissent, while the government hit back, alleging the protests were politically motivated and disrupted Parliament. The face-off spilled from the house into the Makar Dwar, with both sides now refusing to back down.
1: आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे. प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है. और आज अगर हम चर्चा करते हैं तो देश भर में जितना जो पेपर लीक्स हुए हैं एग्जाम के, वो किसी एक राज्य का सवाल नहीं है. कितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं और केंद्र का जो एग्जाम एजेंसी का वहां से भी जो लीक हुआ है, सब मिलकर के चर्चा करेंगे. ये बात हमने सदन में बताया, दोनों सदन में बताया.
0: And that's the statement that has come in from Kiran Rijiju, as the government is now putting down its position very clearly that they want to debate on the neat paper leak and all that has followed subsequently. But it is the opposition that is now creating an obstacle only because they want to politicize this entire matter. You heard that entire statement coming in from Kiran Rijiju, who's pressed this big charge, not just against Rahul Gandhi, but the entire opposition, to say that the government wants a debate on what has happened. However, the opposition is avoiding it for political reasons.
1: Presented to the House on 22nd July 2026.
2: प्रश्न यह है कि यह सभा 22 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 17वीं प्रतिवेदन से सहमत है. जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हां कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव अनुमोदित किया जाए.
3: एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठी चार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं. इसीलिए
1: पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया, हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं. लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है. हमने आश्वासन दिया. आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री

0: जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं।
1: धन्यवाद। अन्य सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर पोस्टर बैनर लेकर के सदन का जो कार्यवाही बाधित करे, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज, आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभापटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, श्री अजय तंता जी।
2: महोदय, आपकी अनुमति से मैं संसदीय कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ।
1: आइटम नंबर 3, महासचिव।
3: सराहा टू रिपोर्ट अ मैसेज फ्रॉम राज्यसभा रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा टू द जॉइंट कमिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024.
1: Item number 4, Sri Bala Sari ji.
4: I rise to present the Hindi and English versions of the 48, 49 and 50 and 51 reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 4.
1: Item number 5, Sri Biplab Kumar Dev.
5: Sir, I rise to present the 3rd report, Hindi or English version of the Committee on Absence, members of the sitting for the House, as listed against my name, as serial number 5, in today's order paper. Thank you.
1: Item number 6, Sri B. Mehtab ji.
6: Honorable Chair, I rise to present a copy of the report, Hindi and English version, on the bill, the Securities Market Code 2025 of the Standing Committee on Finance as listed against my name in serial number 6 in today's list of business.
1: Item number 7, Srimati K. Kanemuji ji.

आज जिन माननीय सांसद को 377 को मुद्दे को उठाने का अनुमति आज मिला है, कृपया उनको

0: बीएमसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन की तरफ से ये पूरी अपील जो है वो की गई थी कि आज शाम 6:30 बजे तक कनॉट प्लेस और की तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो शॉपकीपर्स हैं अपनी जो शॉप्स हैं उसको क्लोज करें, क्योंकि पिछले दो दिन से लगातार जनपद कनॉट प्लेस के आसपास जो है वो लगातार प्रदर्शनकारी जो है वो टारगेट्स कर रहे थे, पुलिस पर लगातार अटैक जो है वो हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से ये अपील जो है सर्कुलर जारी करके जो है वो की गई है कि तमाम रेस्टोरेंट्स और उसके साथ साथ जो लोग वहां पर शॉपिंग के लिए आते हैं, तमाम जो दुकानें हैं वो फिलहाल 6:30 बजे तक जो है वो क्लोज कर दी जाए, ताकि किसी प्रकार से दुकानदारों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा फैसला जो है वो फिलहाल लिया गया है। कल भी देखा था हमने किस तरीके से टॉलस्टॉय मार्ग पर जो है वो उपद्रवियों की तरफ से हंगामा जो है वो किया गया था, पथराव किया गया था पुलिस पे, दिल्ली पुलिस के कई सारे जवानों पर जो है वो अटैक करने के बाद उनको वो घायल हुए थे। उसके अलावा जनपद पर भी परसों की तरफ जो है वो काफी ज्यादा अटैक जो है वो देखने को मिले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए मेट्रो स्टेशन के भी जो तमाम गेट्स हैं कनॉट प्लेस के आसपास उनको क्लोज किया गया। इसके साथ साथ अब न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से एनडीएमसी की तरफ से जो अपील की गई थी उसको लेकर सर्कुलर जारी किया गया।
1: All right, so Shant is tracking. So we'll see this evening how many restaurants, hotels or offices are willing to take that appeal and why possibly would they then either shut early, and if they've chosen not to, how will they ensure that the area, at least at that nobody will face inconvenience. Remember, this is going to be for the next few days a very sensitive atmosphere. There can be violence or lathi charge or stone pelting, but there are general citizens also facing inconvenience. Apart from this, let me now tell you, let's be very clear. Violence has happened at this protest. Protesters, students have been injured, but there have been hooligan elements also who have targeted the police personnel, almost mob lynching some personnel from the police. The rapid action force personnel have been injured as well. There have been serious injuries caused to the protesters, some of them critical in the hospitals, while there are police personnel also who've clearly reported with serious injuries. That also shows how sensitive the situation has been on the ground. Now, what is the latest that we have? I can tell you that we have senior police officials. We are told, apart from one police inspector who was surrounded and beaten by the protesters at Jantar Mantar, suffered injuries to his head. There's been an ACP as well, ACP Jay Prakash, who had stones and bottles pelted at him. Delhi police is alleging some protesters even brandished swords and kukris, adding that the situation remains tense for a brief period. Police says that that's one of the reasons they had to resort to lathi charge. And therefore, as you can see, this was late night. This is yesterday evening. As you can see, late into the night when rapid action force personnel were surrounded by protesters. You can also see, and I have to mention here, you can also see that there are some volunteers from the protest side stopping the violent ones, telling the violent ones not to hit those in uniform. But this also means, and a question is being raised, is a justified NEET protest about youth issues, about education system reform, is it being hijacked by certain elements, and that could prove fatal for the protest as much. So these are some of the visuals on our screens. Let's hear from the latest what's happening on the ground.
2: I'm Inspector Nandkishore Singh. D-4065. मेरी पोस्टिंग SPOW AC नानकपुरा में है। आज मेरी ड्यूटी नाइट ड्यूटी के लिए मैं आ रहा था, तो गाड़ी में क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं गाड़ी हनुमान मंदिर की साइड में लगाकर वहाँ से पैदल पैदल आ रहा था पार्क ऑटो की तरफ से जंतर मंतर की तरफ। जंतर मंतर मेन धरना एरिया में मेरी ड्यूटी थी, वो पार्क ऑटो की तरफ से जैसे निकला वहाँ पर बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी और वो सारे उग्र थे, उनके हाथों में लाठी डंडे पत्थर थे और वो एकदम से मेरे ऊपर हावी हो गए मुझे वर्दी में देख के और वो कह रहे थे मारो पुलिस वालों को। तो उन्होंने फिर मुझे लाठी डंडे पत्थर जो भी उनके हाथ में था उन्होंने मुझे मारा। वो मेरी चेन सोने की चेन थी गले में 2 तोले की, वो लूट के ले गए, मेरा पर्स लूट के ले गए जिसमें मेरा आई कार्ड भी है।
1: Let me now also tell you, meanwhile, the man who's been the face of this protest, that Sonam Wangchuk, the activist who was on over a 20-day hunger strike, was then rushed to the hospital. There's a latest message that's come in from him. And what we have is that, could that fast be coming to an end? I say that because the latest that has come in, it's a video message that has been released in which Wangchuk has put forth certain demands, very clear, very categorical. And one, of course, is in support of the protest.

Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: Sorry.
1: अरे उठा ले रे देवा उठा ले, मुझको नहीं इनको। अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू? अरे तेरे को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का।
2: हेलो, क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है?
1: अरे नहीं रे, ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है। गलत नंबर लग गया तेरे को। अरे पीटर,
2: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है।
1: हलकट, तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको। वो ऑटो पायलट, अरे बाबा उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा।
2: हेलो, क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से हो रही है?
1: देवा, देवा, अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा? मैं फोन में घुस कर तेरे को मारूंगा। रख फोन, रख। अरे राजू, मेरा मागा वाली टोपी का है रे बाबा।
3: सर ये ईरान वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं?
1: अरे एक काम कर, इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा, इंजन बंद कर दे इसका। मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है यार बाबा।
3: लेकिन सर ये हॉर्मोस खोल ही नहीं रहे अभी भी।
1: मार मार साले को, दोनों वाइपर तोड़ दे। एक काम कर, इसका पूरा तेल निकाल ले। ये ले पाइप डाल, एक से गैस निकाल, एक से तेल निकाल।
3: और तीसरे पाइप से?
1: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा, वो दुश्मनों के लिए है, उससे कुछ नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा।
2: सर ये गाड़ी पाकिस्तान की है, बड़ी शोर मचा रही है।
1: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा ना बाबा, क्या मस्त जोक मारा।
3: अरे कौन है? हेलो,
2: क्या आप नोबेल प्राइज चाहते हैं?
1: अरे कौन सा वाला नोबेल है रे, सीज फायर वाला या धमकी वाला? एक काम करने का, दोनों भेजने का, दोनों एक अगले साल ले लूंगा, मस्त भेजने का।

और लंबे समय से धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उनके

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: उठा ले रे देवा उठा ले मुझको नहीं इनको। अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू? अरे तेरे को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का।
2: हेलो, क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है?
1: अरे नहीं रे, ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है। गलत नंबर लग गया तेरे को। अरे पीटर,
2: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है।
1: हलकट, तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको। वो ऑटो पायलट, अरे बाबा उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा।
2: हेलो, क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से हो रही है?
1: देवा, अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा? मैं फोन में घुस के तेरे को मारूंगा। रख फोन, रख। अरे राजू, मेरा मागा वाली टोपी का है रे बाबा?
3: सर ये ईरान वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं?
1: अरे एक काम कर, इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा। इंजन बंद कर दे इसका, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं अरे बाबा।
3: लेकिन सर ये हॉर्मोस खोल ही नहीं रहे अभी भी।
1: मार मार साले को, दोनों वाइपर तोड़ दे। एक काम कर, इसका पूरा तेल निकाल ले। ये ले पाइप डाल, एक से गैस निकाल, एक से तेल निकाल।
3: और तीसरे पाइप से?
1: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा, वो दुश्मनों के लिए है, उससे कुछ नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा।
2: सर ये गाड़ी पाकिस्तान की है, बड़ी शोर मचा रही है।
1: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा है बाबा, क्या मस्त जोक मारा आपने।
3: अरे कौन आ रहा है?
2: हेलो, क्या आप नोबेल प्राइज चाहते हैं?
1: अरे कौन सा वाला नोबेल है रे, सीज फायर वाला या धमकी वाला? एक काम करने का, दोनों भेजने का, दोनों एक अगले साल ले लूंगा, मस्त भेजने का।

0: sorry.
1: अरे उठा ले रे देवा उठा ले, मुझको नहीं इनको। अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू? अरे तेरे को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का।
2: हेलो, क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है?
1: अरे नहीं रे, ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है। गलत नंबर लग गया तेरे को। अरे पीटर,
2: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है।
1: हलकट, तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको। वो ऑटो पायलट, अरे बाबा उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा।
2: हेलो, क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से हो रही है?
1: देवा, देवा, अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा? मैं फोन में घुस के तेरे को मारूंगा। रख फोन, रख। अरे राजू, मेरा मागा वाली टोपी का है रे बाबा।
3: सर ये ईरान वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं?
1: अरे एक काम कर, इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा। इंजन बंद कर दे इसका, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं यार बाबा।
3: लेकिन सर ये हॉर्मोन खोल ही नहीं रहे अभी भी।
1: मार मार साले को, दोनों वाइपर तोड़ दे। एक काम कर, इसका पूरा तेल निकाल ले। ये ले पाइप डाल, एक से गैस निकाल, एक से तेल निकाल।
3: और तीसरे पाइप से?
1: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा, वो दुश्मनों के लिए है, उससे कुछ नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा।
2: सर ये गाड़ी पाकिस्तान की है, बड़ी शोर मचा रही है।
1: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा ना बाबा, क्या मस्त जोक मारा आपने।
3: अरे कौन आ रहा है? हेलो,
2: क्या आप नोबेल प्राइज चाहते हैं?
1: अरे कौन सा वाला नोबेल है रे, सीज फायर वाला या धमकी वाला? एक काम करने का, दोनों भेजने का, दोनों एक अगले साल ले लूंगा, मस्त भेजने का।